कर्म नाम बरनत सुमत जागत ज्योत जपै निसबासुर एक बिना मन नायक न आने।

भुजदंड अखंडं तेज प्रचंडं ज्योत अमंडं पान प्रभं सुख संता करणं दुर्मत दरणं किलबिख हरणं।

आप जी कृपा करके दसो आप जी दे हिरदे दे विच परमेश्वर जी दे अमृत नाम दा किन्ना को प्यार है महाराज किन्ना प्यार वाहिगुरु जी नू ते वाहिगुरु जी दे अमृत नाम नू कर दे हो सतगुरु जी अपने मन की अवस्था दसना करते ने गुरसिख प्यारियो जे एक निमख मात्र समा भी सानू परमेश्वर जी विसर जान सानू मालिक परमेश्वर जी का अमृत नाम विसर जाए निमख कहा जाता जिन्ने समय विच अख चमकी दी है अख चमकण नू जिन्ना समा लगता सो विद्वान जना ने एक निमख कहा है सतगुरु जी बचन करते प्यारियो गुरसिखो अख चमकण जिन्ना समा भी जेकर सानू स्वामी जी मालिक जी वाहिगुरु जी का ध्यान विसर जाए।

छेद हरिय वेद हरिय जंत्र हरिय मंत्र हरि सो तेज हरिय तंत्र हरि अजात हरिय पात हरिय मित्र हरिय मात हरिय रोग हरिय शोक हरिय भरम हरिय करम हरि अजय हरिय भय हरिय भेद हरिय छेद हरिय खंड हरिय भंड हरिय दंड हरि प्रचंड हरी।

में जरत गत राण की परत कर पताल के बस क्यों भुजंग न तरत है। को भयो मुंडिया सन्यासी गो जोगि भयो को ब्रह्मचारी गो जति अनुमान बो हिंदू तुरक गो राव जी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान बो। करता करीम सोई राज करहीम ओई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो। एक ही किसे सब ही को गुरुदेव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो। देहो राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओई मान सब एक बयान एक को फरमाओ है। देवता देव जश गंधर्व दुरक हिंदू न्यार न्यार देशन के

दानवी एक ही स्वरूप सब एक ही बनाओ है। जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हुए के फिर आग में मिलाहेंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। केत कछ मछ केते उनको करत भच केते अच वच हो सब पच उड़ जाएंगे। केत नव बीज अच पच को करेंगे भज के तक प्रतच हो बचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज ज्यों तेज में अतेज जैसे तेज रीन ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। कुकत फिरत किते रोवत मरत किते जल में डुबत किते आग में जरत है। किते गंग वास किते मदी ना मक्का निवास के तक उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत किते भूम में गड़त किते सुह पे चढ़त किते दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त किते जल में रहत किते ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दान वडे बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जाप सीखा सहारे चंदन लगाए हारे जो आचार बोझ हारे बाहन चढ़ाए हारे लापसी गा हरे गोरन मनाए हारे मटी मटली पहारे वितन लगाए हारे छापसी गाए हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित तपंत।

रूपं न रेखं न मोहं न क्रोहं न द्रोहं न द्वैखं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं न मित्रं न सत्रं न पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न धामं न पुत्रं न मित्रं न सत्रं न भावं लेखं अभेखं जोनि स्वरूपं न सदा सिद्धदा

मोहं न मातं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं अद्वैखं अवैखं जोनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परेयं परा परम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदं छेदाद्वय अविनाशी न जातं न पातं न रूपं न रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे किते कृष्ण से कीट कोट उपाय।

न नेहं न गेहं स नेहं स नाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्र न मित्र सभूते भविखे भवाने अचित्रये। न रायं न रंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभं भूतं फेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं स देवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं। न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जो नियच्छयाद अद्वय जोहं न जन्मं न मरणं न वरणं न व्याधं न रोगं न शोकं भय निर्विखादं अछेदं अभेदं कर्मं कालं खंडं भंडं प्रचंडं पालं न तातं न मातं न जातं न कायं न नेहं न गेहं न भर्मं न भायं। न रूपं न भूपं न कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं न भेदं न भर्मं सदैवं सदा सिद्ध।

कहूँ धर्म के कर्म के हरम जाने, कहूँ धर्म के कर्म के भरम माने, कहूँ चार चेष्टा कहूँ चित्र रूपं, कहूँ परम प्रज्ञा कहूँ सर्वभूपं, कहूँ नेह गृहं कहूँ देह दोखं, कहूँ औषधि रोग के शोक सोखं, कहूँ देव विद्या कहूँ दैत वाणी, कहूँ जक्ष गंधर्व किन्नर कहानी, कहूँ राजसी साधकी तामसी हो, कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो, कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं, कहूँ भूमि की भुगत मैं वरम भुगतं, कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो, कहूँ जक्ष विद्या धरे मानवी हो, कहूँ राजसी हो, कहूँ राज कन्या, कहूँ सृष्ट के पृष्ठ के ऋष पन्या, कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम वाणी, कहूँ कोक की काव्य कथा कहानी, कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं, कहूँ मद्र वाणी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं, कहूँ वेद विद्या कहूँ काव्य रूपं, कहूँ चेष्टा चार चित्रं।

रोग रागंग हूँ, रोग हर्ता कहूँ, भोग त्यागंग हूँ, राज साजंग हूँ, राज रीतंग हूँ, पूरण प्रज्ञा कहूँ, परम प्रीतं कहूँ, आरबी तोर की पारसी हूँ कहूँ, पहलवी पस्तवी संस्कृति हूँ कहूँ, देश भाख्या कहूँ, देव बानी कहूँ, राज विद्या कहूँ, राजधानी कहूँ, मंत्र विद्या कहूँ, तंत्र सारंग हूँ, जंत्र रीतंग हूँ, शस्त्र धारंग हूँ, होम पूजा कहूँ, देव अर्चा कहूँ, पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूँ, बीन विद्या कहूँ, गान गीतं कहूँ, मलेज भाख्या कहूँ, वेद रीतं कहूँ, नृत विद्या कहूँ, नागबानी कहूँ, गारडू गूढ़ कथा कहानी कहूँ, अक्षरा पक्षरा मच्छरा हूँ कहूँ, वीर विद्या भूतं प्रवाहो कहूँ, झैल छाला धरे छत्रधारी कहूँ, राज साजं धीरा जाधिकारी नमो नाथ पूरे

जय अंश जगाद करता सदीव हरता सनात आसन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धर्म। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं ब्योत बान। जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चिहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख। जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम धाम नहीं वर्ग ब्याध जय रोग शोक नहीं सत्र साध। जय त्रास वास नहीं देह नास जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत। जय काल व्याल कट्यो नांग अच्छा स्वरूप अखय भंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेब। जय अलख रूप आसन डोल जय अमित तेज अक्षय तोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत। तन शीत घाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तत् पावतन पार। कई ऊर्ध बाह देशन भ्रमांत कई ऊर्ध मध्य पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्र उचरंत वेद कई कोक काव कथत कतेब। कई अग्न होत्र कई पवन हार कई गर्त कोट मृत को हार कई गर्त साक पै पत्र भच्छ नहीं तदब देव हो वत प्रत्यक्ष। कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जगे आद करम कहूँ अग्न होत्र कहूँ तीर्थ धर्म। कई देश देश भाखार डंत कई देश देश विद्या पटंत कई गर्त भांत भांतन विचार नहीं नायक तास पायतन पार। कई तीरथ तीरथ भरम सोभरम कई यज्ञ होत्र कई देव करम कई गर्त वीर विद्या विचार नहीं तदवता सपायतन पार। कहूँ राजरीत कहूँ जोग धर्म कई सिमृत शास्त्रत उचरत सो करम न्योली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मख को बखान। कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जच गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ वर्गदान। कहूँ वित्र करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार। कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रम देश देश अनुदास कई जल निवास कई यगन ताप कई जपत ऊर्ध लटकंत जाप। कई जपत जो कल्पंग प्रजंत नहीं तदब तास पायत न अंत कई करत कूट विद्या विचार नहीं तदब दृष्ट देखे मुरार। बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु करत हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित्त लीन भो कुटो सर्व।

वरं सब कीनी दीन जमीन जमा जेह रचं सर्व मकीन मकां जेह राग न रूप न रेख रुखं जे ताप न साप न सुख सुखं जे रोग न शोक न भोग भुयं जे खेद न भेद न छेद छयं जेह जात न पात न मात पितं जे रचं छत्री छत्र छितं जेह राग न रेख न रोग भणं जे द्वैख न दाग न दुख गणं जेह अंडह ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड दियो श्रे सिंध रू बिंद नगिंद नगं श्रे जच गंधर्व फणिंद भुजंग ते रच देव देव अविव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगं कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उद भुजंग किये देव देव सराद पितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतं प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जेह तात न मात न भ्रात सुतंग जेह रोग न सोग न भोग भुअंग जेह जम पै किन्नर जच जुअंग नर नारण पुंसक जाह किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गज बाजर थादिक पांद गणंग भव भूत भवेक भवान तुअंग जेह अंडज सेतज जेर जंगरज भूम आकाश पताल जलंगरज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भुव मेरा आकाश निवास चितंगरज रोज एकादश चंद्र पितंग दुध चंद दिनी सह दीप दई जेह पावक पवन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय शत्रु उपाय छपाय दिए जय लोक चतुर्दश चार रचे नर गंधर्व देव देव सच्चे अंधूत भूत छूत मतंगन गाद व्याद अनाद गतंगन खेद अभेद छेद नरंग जय चार चतुर्दिश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुखंग जय शोक न भोग न जोग जुगंग भुव गंजन गंजन आदि सिरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाचे भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज वृतंग जय पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड भाजय जम पद वेद पुराण सभा।

जय फोकर धर्म सभत जह चित्त कृपा नित को जप है त्यो या भव साकर कूत रह भव भूल न देह पुनर्धर है। एक नाम बिना नहीं कोट प्रति वेद उचारत सार सुति जो वारस के चस के रस है त्यो भूल न।

न सिंह है, न श्यार है, न राव है, न रंग है, न मान है, न मौत है, न साक है, न संक है, न जाच है, न गंद्रम है, न नार है, न नार है, न चोर है, न साव है, न शाह को कुमार है, न नेह है, न गे है, न देह को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छल को मिलाओ है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है, न रंग है, न रेग है, न रूप है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छाया को मिलाओ है, न राग है, न रंग है, न रूप है, न रेग है, न कर्म है, न धर्म है।

पर यह पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अभंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साध है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमाथ है, न सीध है, न सोच है, न घ्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैख है, न भेग है, न दुई है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदीव दयाल रूप है, अघंज है, अभंज है, अभरम है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंज है, अभूत अवेक है, बलि

ना ब्याद को विचार है, न रंग राग रूप है, न रूप रेखरार है, न हाव है, न भाव है, न दाव को प्रकार है। गजाधपि नराधपि करंत सेव है, सदा सिद्धस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा। अगस्त आद जे बड़े तपस्त भी बिसेखी है, बेअंत बेअंत बेअंत वो करंत पाठ पेखी है। अगाध आद देव की अनाथ बात मानी है, न जात बात मंत्र मित्र सत्र सने जानी है।

हस्त कीट बिखै पसै सब डौर मैं निर्धार। जात पातना तात जा को मंत्र मातना मित्र सर्व ठार बिखै रम्यो जह चक्र चिहनना चित्र। आद देव उदार मूर्त अगाध नाथ अनंत आद अंत न जानिए अभिखाद देव दुरंत। देव भेव न जानही जे मरम वेद गतेव सनक औसन केस नंदन पाव।

देव देव गंधर्व किन्नर माछ कछ अपार भूम का जले थले मेहमानिय जय नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोविंद मित्र बालक शत्रु घाल।

कोटिंद्र उपेन्द्र व्यास सनक सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत भय मुखचार आदंत न मद जाको भूत भव भवान सत दुआ प्रत्या कल जुग चत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हार हार थके सब नहीं पाइये तह पार नारद आदिक वेद व्यास मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट तुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच बछर पार सोत सोत थके महासुर पायो नह पार।

रूड वंगे बपर बवंगे भुजा फुरंगे तेज बरंग लंगुड़िया फांदे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायद चमके भूखण दमके अत से झमके फुंग फनंग जय जय हो से मखा सुर मर्दन रमक बर्दन दैत जिणंग चंडासुर चंडन मुंड में मुंडन खंड खंडन खून खिते दामनी दमंगण धुजा फुरंकण फणी फुंगारण जोध जिते सरधार विपरखण दुष्ट प्रकर खण पुष्ट प्रहर खण दुष्ट मथे जय जय हो से मखा सुर मर्दन भूम का तलूर्ध अधे दामनी प्रहासन सुषम निवासन सृष्ट प्रकाशन गूढ़ गते रक्ता सुर आचन युद्ध प्रमाचरण निते नराचन धर्म प्रते श्रोणंद चिंती अनल विवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय हो से मखा सुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अग ओघ निवारण दुष्ट प्रजारण सृष्ट उपारण शुद्ध मते फणि अर्फुंकारण बाघ बकारण शस्त्र प्रहारण साध मते सहती सन्नाहन अश प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय हो सी मखा सुर मर्दन भूम आकाश पताल जनंग चाचर चमकारं चिच्छोरहारं धूम धुंगारं द्रप मथे दाढ़ विव्रतंते जोग जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंत प्रकाशन सूर्य प्रतेजन अष्टभुजे जय जय हो सी मखा सुर मर्दन भरम विनाशन धरम धुजे घुंगुरु घमंकण शास्त्र झमंकण फणियर फुंकारण धरम तुझे अष्टाट प्रहासन श्रेष्ठ निवा

जुन जुन बाजे भ्रम बाजे सुनत सुरंग को किल सुन लाजे किल विग भाजे सुखो बराजे मध उरंग दुर्जन दल दज्जे मंतन रिज्जे सब न भज्जे रूह रणन जय जय होसी मैं खासुर मर्दन चंड चक्र तन आद गुरंग चाचरी प्रजोधन दुष्ट विरोधन रोस रोधन क्रूर विते धूमराज विधुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विधुंसन शुद्ध मते जाल बाजयंती शत्रु मधंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय हो सी मै खासुर मर्दन आद जुगाद गाद गते खत्रियान खतंगी अब अभंगी आद नंगी अगाद गते बिरलाज विहंडन चछुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृते सुर नर प्रतिपारण पति दो धारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय हो सी मै खासुर मर्दन विश्वभिदन संश्रेष्ठ करे दामनी प्रकाश उन्तन नासे ज्योत प्रकाश ये तुलबले दानवी प्रकरखण सर्वर वरखण दुष्ट प्रदरखण पितल तले अष्टायत बाहन बोल निबाहन संत बनाहन गूढ़ गते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन आद अनाद अगाध प्रते दुख दुख प्रवच्छन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना हे दुष्ट पता हे अर्दल गाहे दुख हरे गंजन गुमाने अतल रवाने संत जमाने आद अंते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन साध प्रदर्शन दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ कहीली जोत जतीली धुंध मते अष्टायत चमकण शस्त्र झमकण दामिन दमकण आद वृते डुगडुकी दमंगे बाघ बुबंगे हुजा फरंगे शुद्ध गते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते तछरा सुर मारण नरक निवारण पतित उदाहरण एक भटे पापान बिहंडन दुष्प चंडन खंडे।

बचावे और की बात कहा कह दो सो सो पेट ही के बट बीच बचावे। जच भुजंग सो दानव देव भेव तुम्हें सब ही कर द्यावे। भूम आकाश पताल सातल जच भुजंग सब सर न्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभाहु को नेत ही नेत वेद बतावे। घोर थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हूँ मिल गायो। वेद कते बन भेद रखियो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन में जय को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेब कुरान अभेद नृपान सब है पचहारे। वेद न पाए सक्यो अन भेद मुखे दत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे। आद अनाद अगाध विगत वेख जप्यो तिन ही कुल तारे। तीर्थ कोट की स्नान दिए बहुदान महाप्रत धारे। देश विरो कर भेद तपोषण केस धरे न मिले हर प्यारे। आसर कोट करे अष्टांग धरे मोहन्यास करे महुकारे। दीन दयाल अकाल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया छित्र छत्र के धरैया छत्र धार्यो के छलैया। महासत्रन के साल है दान के दिवैया। महामान के बढ़ैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया। महाबुद्ध के दिव्या महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव। काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्व बिना पार बाबा हिंगुला हिमालय ध्यावे। गोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पौन साधना की तेग बांधे। अरब के अरब आराध्य तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरेसी जाने। पच्छम के पच्छमी पछाने निज काम है। मरहटा मंगेली तेरी मन सो तपस्या करे। दृढ़ वे तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगावादी। दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रोहेले मांग देश के मंगेले वीर। बंग से बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुण गावे जिन मचीन के शीस न्यावे। देव तिथि आये दुख देह के दलत है। जिन्हें दोहे ध्यायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो। सर्व धाम धन धाम फल फूल सो फलत है। देव देव दान को सुरेश दानवान को महेश। गंग दान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण। और काहू पे न दीन साध दीन कहियत है। पाई न पार तेज पुंज में अपार। सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार पल पाछे पहुँचतता है। चिट्ठी की चिंघार पहले ही सुनियत है। केते इंद्र द्वार केते ब्रह्मा मुख चार। केते कृष्णा अवतार केते राम कहियत है। केते ससरासी केते सूरज प्रकाशी। केते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। केते महादीन केते व्यास प्रवीन। केते कुमेर गुलीन केते जश कहियत है। करत है विचार पैना पूर्ण को पावे पार। ताही ते अपार निराधार लहियत है। पूर्ण अवतार निराधार है न पारावार। पाई है न पार व्य पार के बखानी है। अद्वय अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी। महारूप हूँ के राशि है अनासी के कमानी है। जंत्र हूँ न जात जा की बाप हूँ न माए ताकि। पूर्ण प्रभा की सो छटा के अनुमानी है। तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को। जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र के जानी है। तेज हूँ पतर है के राजसी को सर है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है। कामना की खान है के साधना की शान है। विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है। कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनीमन को गारक है। साधन को रचक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है। काम को गुनिंदा है के खूबी को दिहंदा है। गनीमन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हों के काल है के शत्रुन के सार है के मित्रन को बोकत है के वृद्धता की बासी है। जोग हों को जंत्र है के तेज हों को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हों को घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है। अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है।
जान को बचैया है, मान को दिवैया है, जमजाल को कटैया है, कामना को कर है, तेज को प्रचंड है, अखंडन को खंड है, महीपन को मंड है, के स्त्री है न नर है, विश्व को भरण है, के आपदा को हरण है, के सुख को करण है, के तेज को प्रकाश है, पाई न पार पार वार हूं को पार जग की जत विचार सो विचार को निवास है, हिंगुला हिमालय गावे हबसी हल विध्यावे पूर्व बिना पार पावे असत अनाश है, देवन को देव महादेव हूं के देव है, निरंजन अभेव नाथ अद्वै अविनाशी है, अंजन विहीन है, निरंजन प्रवीण है, के सेवक अधीन है, कटैया जम जाल के, देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ, भूम के भुजैया है, मुहैया महाबाल के, राजन के राजा महासाज हूं के साजा, महाजोग हूं को जोग है, धरैया द्रोम छाल के, कामना के कर है, के बुद्धता को हर है, के सिद्धता के साथी है, के काल है कुचाल के, छीर कैसी छीरावत छाछ कैसी छतरा ने, छपा कर कैसी छप कालिंद्र के कूल के, हंसनी सी हर हीरा सी हुसनाबाद, गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के, पारासी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर, सूरसी सुरंगाबाद नीके रही झूल के, चंपा सी चंदेरी गोड चांदनी सी चांदागढ़, कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के, फटक सी कैलाश कमाऊगढ़ कांसीपुर, सीसा सी सुरंगाबाद नीके सोहियत है, हिमा सी हिमालय हर हार सी हलपा ने, हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है, चंदन सी चंपावत चंद्रमा सी चंद्रगिर, चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है, गंगा सम गंग धार बकान सी बिलंदाबाद, कीरत तिहार की उजियारी सोहियत है, फारासी फिरंगी फारासी के दुरंगी, मकरान के प्रतंगी तेरे गीत गाइयत है, फखरी गंधारी गोर कखरी करते जचारी, पौन के हारी तेरो नाम ध्यायत है, पूरब पलाऊ काम रूप कमाओ सर्व ठौर में विराजे, जहां जहां जाइयत है, पूर्ण प्रतापी जंत्र मंत्र ते अतापी नाथ कीर

धन धन लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब नवाजा अखल भवन के सृजन हारे दास जान मोहले हो उबारे कभी बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दरक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तव चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब है तुम घावो आप हाथ दे मोहे बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सब है कर तारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संघरिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं जो बर चाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास नवरी है हो जो सदा हमारे पच्छा श्री असधुज जों करिय रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता

मोहम्मद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चींटी ते कुंचर यस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जावुद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देहे अपारा जब आकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे धर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ट सब धारे आप अपनी भूज उचारे तुम सब

बरंत भिन्न भिन्न तोहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कह बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही भूपा, अंडज जे रज से तज कीनी, उत्भज खान बहर रच दीनी, काहू फूल राजा हुए बैठा, काहू सिमट भयो शंकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो, दुष्ट जुते उठव तुत पाता, सकल मलेच्छ करो ऋण घाता, जे अस ध्वज तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तुहे मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार धिए हैं, ताके काल निकट नह है, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्टन जाए निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो, रिद्ध सिद्ध घर मो सब होई, दुष्ट छा छुए सके।

करे सब काज, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब नवाजा। दास जान कर कृपा करो, मैं हार परा मैं आन द्वार तोहे, अपना जान करो।